0: Count your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89.
3: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है Ilson Computer, जहाँ टेस्टिंग का हर पल होता है. Comfortable, smooth और stress-free. Daily availability, nationwide centers, और results भी मिले within just 3 days. आज ही बुक करें अपना Ilson Computer, AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
4: BTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat zawabit lagu hain.
5: Pakistan ne hame freedom di to dream big. तो फिर ड्रीम्स को लिमिट क्यों करें? गो आउट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लर्न समथिंग न्यू. डिग्री लो, एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो और फिर वापस आओ. जो सीखा है वो पाकिस्तान को दो. बिकॉज गोइंग ग्लोबल डजंट मीन लीविंग होम बिहाइंड. कभी कभी फ्यूचर तक पहुंचने के लिए पहले दुनिया देखनी पड़ती है. AEO पाकिस्तान की जानिब से अहले वतन को जश्न आजादी मुबारक.
6: सिटी एफएम 89.
7: फूड बिल्ड्स अ चाइल्ड्स बॉडी अप बट अनक्लीन वाटर टेयर्स इट राइट बैक डाउन. एवरी सिप ऑफ कंटामिनेटेड वाटर ब्रिंग्स साइलेंट इन्फेक्शंस दैट वॉश अवे एसेंशियल न्यूट्रिशन, लीविंग ग्रोइंग बॉडीज वीक एंड स्टंटेड. विदाउट क्लीन वाटर देयर इज नो गुड न्यूट्रिशन.
8: द इमरजेंसी वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
0: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: City FM 89.
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
5: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
6: At shopping of 5,000 rupees
5: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
7: Aaj subah gaadi mein apne paison se petrol dalwana. ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
8: सिटी एफएम 89. यू कांट बिल्ड अ स्ट्रांग होम ऑन अ वीक फाउंडेशन. व्हेन एन एक्सपेक्टेंट मदर सफर्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, हर अनबोर्न चाइल्ड सफर्स टू. एंटरिंग द वर्ल्ड ऑलरेडी एट रिस्क ऑफ स्टंटिंग एंड लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल्स, टू रेज अ हेल्दी जनरेशन वी मस्ट नरिश द वुमेन कैरियिंग देम.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
10: City FM 89, we're playing your song.
11: Everybody go!
1: You're listening to

0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
6: फूड बिल्ड्स अ चाइल्ड्स बॉडी अप, बट अनक्लीन वाटर टेयर्स इट राइट बैक डाउन। एवरी सिप ऑफ कंटामिनेटेड वाटर ब्रिंग्स साइलेंट इन्फेक्शंस दैट वॉश अवे एसेंशियल न्यूट्रिशन, लीविंग ग्रोइंग बॉडीज वीक एंड स्टंटेड। Without clean water, there is no good nutrition.
7: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
2: City FM 89.
8: Hey Pakistan, calling on all architects, designers and artists. Are you ready for the 5th edition of the ADA Awards? Display your skills amongst the world's best in front of an international panel. Showcase your talent beyond borders and submit your entry by the 17th of August at awards.adapk.com.
3: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM.
3: City FM 89.
4: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. ईजी पैसा डिजिटल बैंक. ईजी वाला बैंक.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शर्तें जवाबित लागू हैं.
7: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर. ऐसी ऑफर्स अब कहां?
8: पाकिस्तान ने हमें फ्रीडम दी टू ड्रीम बिग. तो फिर ड्रीम्स को लिमिट क्यों करें? गो आउट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लर्न समथिंग न्यू. डिग्री लो, एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो और फिर वापस आओ. जो सीखा है वो पाकिस्तान को दो. बिकॉज गोइंग ग्लोबल डजंट मीन लीविंग होम बिहाइंड. कभी कभी फ्यूचर तक पहुंचने के लिए पहले दुनिया देखनी पड़ती है. AEO पाकिस्तान की जानिब से अहले वतन को जश्न आजादी मुबारक.
9: We're playing your song.
10: Food builds a child's body up, but unclean water tears it right back down. Every sip of contaminated water brings silent infections that wash away essential nutrition, leaving growing bodies weak and stunted. Without clean water, there is no good nutrition.
11: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
1: City FM 89. We're playing your song. It's all good.
12: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
13: Hey, where did we go? Days when the rains came.
12: To music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
14: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
1: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
15: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
16: Welcome back to Full Disclosure. I kind of like rediscovered this song for myself on TikTok a few weeks ago. Number one, I'm shocked it's Fergie. But number two, I just cannot stop listening to it. Here she is with Clumsy.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
6: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
7: At shopping of 5,000 rupees
6: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
8: Din mein apne paison se kisi raah chalte ki help karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
10: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शरायत जवाबित लागू है.
11: City FM 89.
12: With food prices jumping up by 50%, a simple, nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
13: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
1: You're listening to
14: Full Disclosure with Saba Baro Malik.
15: That was Thames with mine. Up next, Charlie XCX with 360.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक।
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
4: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना ये है असल आजादी आपके लिए असल आजादी क्या है डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ
7: पाकिस्तान ने हमें फ्रीडम दी टू ड्रीम बिग तो फिर ड्रीम्स को लिमिट क्यों करें गो आउट एक्सप्लोर द वर्ल्ड लर्न समथिंग न्यू डिग्री लो एक्सपीरियंस लो एक्सपोजर लो और फिर वापस आओ जो सीखा है वो पाकिस्तान को दो बिकॉज गोइंग ग्लोबल डजंट मीन लीविंग होम बिहाइंड कभी कभी फ्यूचर तक पहुंचने के लिए पहले दुनिया देखनी पड़ती है AEO पाकिस्तान की जानिब से अहले वतन को जश्न आजादी मुबारक
8: We're playing your song.
9: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite, Aga Khan University.
0: City FM 89
10: sounds different.
11: You're listening to
12: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
13: That was Little Sims Mood Swings. We are at the end of our show today, everyone. I know today was heavy on the music and the PSAs from me to you, but I hope you enjoyed today's playlist and I hope you have a fantastic, safe rest of your Saturday. I cannot wait to hang out with you tomorrow. Bye.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
5: Coming up next.
1: Non-stop hits.
2: City FM 89. We're playing the song.
6: Trending today.
7: The Weeknd has officially confirmed that he will not be retiring his iconic stage moniker after all. The Toronto-based artist, born Abel Tesfaye, addressed the crowd at a recent live show to clarify that he plans to keep his long-running creative persona alive.
2: FM 89.
8: You got me going crazy.
9: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
10: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
11: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
12: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
13: At shopping of 5,000 rupees
12: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
14: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शरायत जवाबित लागू हैं.
15: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक.
16: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
17: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
18: पाकिस्तान इज फेलिंग इट्स फ्यूचर.
19: एवरी सिंगल डे 27 मदर्स डाई गिविंग लाइफ
18: एंड 675 न्यूबॉर्न्स डोंट सी देयर फर्स्ट मंथ.
19: इट्स अ क्राइसिस वी इग्नोर.
18: राइट नाउ 40% of our kids under 5 are stunted.
19: Their growth, their brains held back forever. Why?
18: Poverty forcing families to buy empty calories.
19: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
18: A health system that is failing our mothers.
19: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
18: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
19: This isn't just a statistic. This is our future generations.
18: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
8: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
4: No talk.
9: Just you and the music.
2: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना ये है असल आजादी आपके लिए असल आजादी क्या है डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
6: Apni salary se puri family ke liye Mari mein staycation book karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
8: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000 फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई शर्त जवाबित लागू है
9: सिटी एफएम 89
10: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite, Aga Khan University.
11: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं ईजी पैसा डिजिटल बैंक ईजी वाला बैंक
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
6: Azadi ke in rangon aur khushbuon se bani hamari is pehchan ko manane ke liye Kashmir Cooking Oil laya Azadi offer. 79 rupaye tak ki bachat ke saath. Jashn-e-Azadi Mubarak.
7: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना ये है असल आजादी आपके लिए असल आजादी क्या है डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ
8: सिटी एफएम 89
9: यू हैवंट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर फिफ्थ बर्थडे येट हाउएवर यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी चाइल्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर एवरी चाइल्ड एवरी मदर For a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF. Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite, Aga Khan University.
10: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: PTCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शराइत तो सवाबित लागू हैं.
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
7: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
8: सिटी एफएम 89.
9: अ बॉन्ड ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड इज लाइक नो अदर. वी लूज 9,800 न्यू मदर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. विद एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी कैन सेव आवर होपफुल मदर्स. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight, Aga Khan University.
8: City FM 89.
10: We're playing your song.
9: Attention, the standard commute has been decommissioned.
11: Introducing a system override for your ears.
12: New energy, new perspective.
9: The same 24 hours, but a completely different vibe.
13: Join ABD as he takes over the streets.
12: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
13: The rush hour with ABD.
9: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
11: Tune in or get left behind.
1: City FM 89,
14: your drive-along companion.
1: You're listening to
15: Non-Stop Hits.
16: Of the fight, fight, thrill of the rage, rage. Crushing my opponent, opponent. Foot up out the break, break. Cleaning all the plates, plates. Finna make bang, bang. Finna make history. Turn this pain to energy.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
5: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
6: At shopping of 5,000 rupees
5: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्ने आजादी मुबारक.
8: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ.
9: City FM 89.
10: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth, and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite, Aga Khan University.
11: City FM 89.
12: Attention, the standard commute has been decommissioned.
13: Introducing a system override for your ears.
12: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
14: Join ABD as he takes over the streets.
12: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
13: your evenings just got an upgrade.
14: The Rush Hour with ABD.
12: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
13: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
1: This is
15: City FM 89.
0: You're listening to
1: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैज कैश है ना.
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
4: सिटी एफएम 89.
5: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
6: City FM 89.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: City FM 89.
9: On the dial.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैज कैश है ना.
0: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
3: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शरायत जवाबित लागू हैं.
4: City FM 89.
5: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
4: City FM 89.
6: You're listening to

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
4: BTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत और जवाबित लागू हैं.
5: You're listening to City FM 89.
6: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
7: City FM 89.
8: Attention, the standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
10: The Rush Hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
11: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
12: Beat Camp.

0: prolonged your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 11:30 p.m.
3: City FM 89.
4: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक।
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
6: BTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें जवाबित लागू हैं।
3: You're listening to City FM 89.
7: We're playing